0: हो रखी हुई है। तो अगर ये जो हरमनप्रीत और जो स्मृति ने जो जब नॉर्मली क्या स्मृति जब बड़े बड़े सेंचुरी वगैरह बना लेती हैं तो नीचे के प्लेयर्स के पास ज्यादा मौका मिलता नहीं है। और अभी ये जो दोनों टीमें थी हांगकांग और ये जो बहुत वीक टीमें थी तो वो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा टेस्ट करा पाए होंगे और वो फोकस भी मुझे लगता नहीं है जो इंडियन टीम का जो कंसंट्रेशन लेवल है इस पे होगा। लेकिन आज का जो मैच है मुझे लगता है कि आज हरमन और स्मृति दोनों ही अपनी पूरी फॉर्म के साथ दिखाई देंगे आपको।
1: जी, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारी कॉलिंग लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं।